0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई सोच,
3: नई सोच,
4: एक नई पहचान,
5: पहचान,
2: एक नई लगन,
5: नई लगन।
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
4: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
4: यूसीपी की दुनिया।
5: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
3: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं अपनी फैकल्टी के मोतबर उस्तादजा से, नेटवर्किंग के बारे में, स्किल्स के बारे में, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की, एकेडेमिया की, एंटरप्रेन्योरशिप की, न्यू स्किल्स और ट्रेंड्स की, एड पीआर की स्पेशलाइजेशन की, फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया की स्पेशलाइजेशन की, एंड सो ऑन। और आज जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनका बहुत गहरा ताल्लुक है मीडिया इंडस्ट्री से। आप बखूबी सोच को हकीकत का रंग देना जानते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे से देते हैं कि स्टूडेंट्स की सोच का हिस्सा बन जाता है। और आप प्रिंसिपल लेक्चरर हैं फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। मैं बात कर रही हूँ सर शाहिद की। अस्सलाम वालेकुम सर शाहिद
4: जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं
3: आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ।
3: अच्छा सर, अगर हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, तो मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी मीडिया इंडस्ट्री में करियर का आगाज कैसे किया? कहाँ से सोचा कि मुझे मीडिया को ज्वाइन करना है? या एज अ स्टूडेंट आप हमेशा से सोचते आए थे कि मैं मीडिया में ही जाऊंगा, मुझे इंजीनियरिंग और मीडिया में अगर चूज करना हुआ तो मैं मीडिया ही चूज करूंगा? कैसे आप अपने अपनी करियर का आगाज किया?
4: बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का और अपना गेस्ट बनाने का। मीडिया में आने का कोई ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। यहाँ पे आना कुछ आप कह लेंगे सडन ही रहा मेरे लिए। 2005 में लाइक मैं जब अपनी ग्रेजुएशन से कंप्लीट की तो मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था, और उसके बाद अचानक मीडिया का एक बूम जो कि आपको न्यूज़ की फॉर्म में नज़र आया, प्राइवेट चैनल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े, तो वो देख के मुझे एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और मुझे थोड़ा सा शौक पैदा हुआ कि मैं कुछ मीडिया में करूं। और मीडिया में स्पेशली जो एक डिजिटल साइड है ना, जिसमें के जो कि एनिमेशन से रेलिवेंट है, जो कि हकीकत से तो हट के लेकिन उसमें हकीकत का रूप ढालने की कोशिश की जाती है एनिमेशन करियर में, तो मेरा बेसिक इंटरेस्ट तो एनिमेशन में क्रिएट हुआ कि जो एनिमेशन थी वो किस तरह से एक नॉन रियल चीज़ को अब रियलिटी की फॉर्म में पेश करते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। और वो मैंने कुछ प्राइवेटली अपने गाँव में कुछ एनिमेशन के कोर्सेज खुद से ही डाउनलोड करके और करने की कोशिश की। और इसी दौरान मेरे अंकल जो कि कनाडा रहते हैं वो वहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त हैं प्रोड्यूसर जो कि लाहौर में हैं और वो ड्रामास प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मार्केट में काम करते हैं। तो वो मेरा एकदम से मुझे क्लिक की ये बात कि कोई है ऐसा लिंक जिससे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ और मैं मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो जस्ट उनके बताने पर मैं लाहौर आया, उनसे मिला, और वो ज़रा ड्रामा की प्रोडक्शंस किया करते थे प्राइवेटली और जो कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पे चलते थे। तो मैंने उनको अपने शौक का बताया। उन्होंने मुझे शुरू में मना किया कि आप नाइस इंडस्ट्री में आओ, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें आपका इंटरेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि मैंने एक प्लान किया हुआ था, सोचा उस वक्त, ज़्यादा शुरू से प्लान नहीं था लेकिन उस वक्त मैंने सडन सोचा था कि मुझे ये करना है, और उनके साथ भी मैंने काम करना शुरू किया प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री में। और उसका वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे कि प्राइवेटली किस तरह से एक चीज़ जो कि रिटन फॉर्म में है वो विजुअल स्क्रीन के लिए किस तरह से क्रिएट होती है, और उसकी जो भी डायनामिक्स थे, जो भी उसकी मुश्किलात थी, जो भी उसका स्किल सेट था, वो मैंने वहाँ उसके साथ सीखा। और उस वक्त मेरी एजुकेशन नहीं थी, कोई भी फॉर्मल मीडिया की एजुकेशन नहीं थी, और मैंने इससे 4-5 साल जब मैंने काम किया और मुझे फिर एहसास हुआ कि मुझे एक एजुकेशन की भी ज़रूरत है कि अगर मीडिया में मैंने काम करना है, गो कि मैं बहुत अच्छे टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं एक कमी फील होती थी कि मीडिया में अगर आपने सर्वाइव करना है, अगर रहना है और एक अच्छी प्रोडक्ट लोगों को सामने लेके आनी, तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो फिर मैं इसकी स्टडी की भी तरफ आया और फिर मैंने फॉर्मल एजुकेशन जो मीडिया की होती है वो हासिल की।
3: अच्छा सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आपने अपने करियर का आगाज़ जब किया तो किसी प्राइवेट चैनल के साथ किया काम करके, तो आपका पहला करियर के आगाज़

0: में पहला ऐसा ड्रामा या पहला ऐसा स्क्रिप्ट कौन सा था जिसको आपने विजुअलाइज होते हुए देखा और आपने सीखा कि अच्छा ये जो सोच है इसको हकीकत का रंग कैसे देना है?
1: अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया तो लाहौर में टीवी प्रोडक्शंस काफ़ी ज़्यादा थी एक ज़माने में, लेकिन 2006 की बात है और 2006 से 10 तक लाहौर में जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। अब गो के अब भी हो रहा है लेकिन अब निस्बतन कम हो रहा है। कराची में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है हमारा, लाइक कुछ 70-80% काम कराची से हो रहा है। लाहौर में थोड़ी कम हो गई है प्रोडक्शंस, लेकिन उस वक्त एक बूम था लाहौर में। और स्पेशली जो ड्रामास की खास फॉर्म है जिसको हम सिटकॉम्स कहते हैं, सिचुएशन कॉमेडी, वो लाहौर की पहचान थी, क्योंकि कॉमेडी जो है वो पंजाब के रहने वाले लोग उसको ज़्यादा शायद कॉमेडी को एंजॉय करते हैं, और लफ्ज़ों में जो मज़ा है उसके ज़्यादा मीनिंग किस किस तरह से निकलते हैं वो इंडस्ट्री जो है ना वो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा थी। तो जो मेरा शुरू का एक्सपीरियंस रहा है पहले 4-5 साल का वो सिचुएशनल कॉमेडी से रेलिवेंट ही है, कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ जियो के ड्रामास थे। अब मैं नाम तो शायद मैं उस तरह से ना आपको डायरेक्टली कोट करूँ, इंडस्ट्री भी होता था उस पर, जैसे रबर बैंड वहाँ पे चल रहा था, भट्टी की बस होगी, कुछ ऐसे कॉमेडी है, कॉमेडी की थे, सिचुएशनल कॉमेडी थी, तो वो ड्रामास चल रहे थे, तो वो उसका मुझे एक्सपीरियंस रहा शुरू में। लेकिन उसके साथ साथ फिर कुछ जैसे सीरियल्स होते हैं जो लंबी ड्यूरेशन के ड्रामास होते हैं और मुसलसल कहानी होती है, तो सीरियल्स में भी काम करने का मौका मिला मुझे। और स्टार्ट में सारे ड्रामास थे, और ड्रामास हो के ऑलमोस्ट जियो पे, पीटीवी पे और एआरवाई पे ऐसे ड्रामास थे जिनके साथ मैं मुंसलिक रहा।
0: अच्छा सर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जब आपने अपने इस करियर का आगाज़ किया तो आपको भी कहा गया कि इस फील्ड में मत आएं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो करें, और इस फील्ड में इतना स्कोप नहीं है, चीज़ें उस तरह नहीं है। अक्सर मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स बड़ा शिकायत करते हैं इस चीज़ के बारे में कि मैम हम गए थे और हमें बहुत बुरी तरह से उन्होंने जो है वो कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता, आप कैसे सीखेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उन स्टूडेंट्स को आप किस तरह से गाइड करते हैं और उन्हें कैसे सिखाते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या जरूरी है?
1: अच्छा, ऐसे है कि जो मीडिया की इंडस्ट्री है वो आपकी ना बहुत ज्यादा, आपका पैशन बहुत ज्यादा आपका रिक्वायर्ड होता है उस मीडिया की इंडस्ट्री में। और अगर आपके पास पैशन नहीं है और काम करने की लगन उस तरह से नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। गो के बहुत आसान है, अगर आपका शौक है तो आप मीडिया में ना सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं बहुत, बल्कि एक्सेल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आप देखते हैं कि आजकल भी और हमेशा से ही मीडिया जो है वो स्टार मेकर्स है, और यहाँ पे आने वाले लोग जो काम करते हैं वो पाकिस्तान के चूजन लोग होते हैं, कि वो लोग जो कि स्पेशल होते हैं किसी ना किसी खास फील्ड में, और वो ऑन स्क्रीन आते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो फील्ड जो है डिमांडिंग जरूर है कि ये फील्ड जो है, और अगर आप बगैर किसी एम्बिशन के आते हैं, बगैर किसी सिर्फ लगन के आते हैं और बगैर किसी इंटरेस्ट के आते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वक्त आप एक खास कंपटीशन में, और ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसे सारी दुनिया देख रही है, तो आपको हर वक्त बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे से अच्छा काम करना है। स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो बहुत सारे एज ए मीडिया को देखते तो हैं, उन्हें उसका वो चकाचौंध तो नज़र आती है कि वो क्या जो नज़र आ रहा लोग, लेकिन उनके पीछे उनकी स्ट्रगल नहीं नज़र आ रही होती कि आपको कितना ज़्यादा टाइम की डेडिकेशन कितनी चाहिए, मेंटल डेडिकेशन कितनी चाहिए, आपको स्किल सेट कितना चाहिए। तो वो जब उस लगन के बगैर आप आते हो स्टूडेंट्स जो, तो फिर उनके लिए मुश्किल होता है। और इसीलिए जो आपका जो सक्सेस रेट है, वो लोग जो एम्बिशियस होते हैं, वो स्टूडेंट्स जो एम्बिशियस होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो टाइम ज़्यादा देते हैं, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग ज़्यादा होते हैं, उनके लिए तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होती है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो थोड़े से लेज़ी होते हैं या उसको उस तरह से जस्ट स्क्रीन पे आने का तो शौक होता है लेकिन उसके पीछे वो जो मेहनत जो रिक्वायर्ड है वो नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए मुश्किल होता है। तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो डेडिकेशन के साथ अगर इस फील्ड को समझते हैं कि उनके लिए ज़रूरी है, तो फिर उनको ज़रा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच सर शाहिद इतनी मज़े की एडवाइस देने के लिए और स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से समझाने के लिए। इसी के साथ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, इसके बाद आपसे दोबारा बात करते हैं सर शाहिद से उनकी एकेडमिया के सफ़र के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आप सुन रहे हैं FM 92.6, मैं हूँ मरियम इरशाद, प्रोग्राम फैकिलिटी आर्ट के साथ।

0: Austin, University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे FM 92.6। मैं हूं मेरी मिश्रा, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी के आर के साथ। अभी ब्रेक में जाने से पहले हम सर शाहिद से बात कर रहे थे, जो प्रिंसिपल लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन है। उनसे प्रोफेशनल करियर और उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में। सर, अब ये बताएं कि प्रोफेशनल करियर से किस तरह से एकेडेमिया को ज्वाइन किया, कहाँ सोचा कि अब मुझे जो मैंने सीख लिया है मैंने जाके पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, सिखाना है, वेल ट्रेन करना है, ताकि जब वो मीडिया इंडस्ट्री में आए तो जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज मैंने देखे उन्हें ना देखने पड़े।
4: अच्छा, मैं क्योंकि काम कर रहा था प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, और उसके साथ ही फिर मैंने टीवी चैनल्स को भी ज्वाइन किया, जिसमें मुझे जियो टीवी और दुनिया टीवी के साथ काम करने का कुछ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं वहाँ पे इंडस्ट्री में था तो मुझे कमी महसूस हुई कि जो मेरी एजुकेशन है मीडिया की वो उस तरह से नहीं है। मीडिया आपका ना टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है, जो इसकी एक इसकी नेगेटिव चीज़ है कि मीडिया आपका टाइम ज़्यादा मांग रहा होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेंटली भी और प्रैक्टिकली भी। और वो अगर आप घर वालों के साथ हो तो आपको कहीं ना कहीं गैप फील होता है कि आप घर वालों को आप थोड़ा सा कम टाइम देते हैं और मीडिया को आपको ज़्यादा टाइम,
3: बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है।
4: तो वो मुझे भी फील हो रहा था कि मुझे घर वालों को टाइम की ज़्यादा ज़रूरत थी। एक वक्त था कि मुझे अपने घर को ज़्यादा टाइम दें, तो वहाँ मैंने सोचा कि मुझे जो प्रैक्टिकल फील्ड से निकल के थोड़ा सा एक तो पहले इसको लर्न करना चाहिए, जो भी इसकी डायनेमिक्स हैं, जो भी इसकी एजुकेशन है, ताकि मैं एक तो एक्सेल कर सकूँ, जब मेरे पास टाइम हो तो मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकूँ, और दूसरा कि मुझे घर के वालों के लिए टाइम भी चाहिए। तो दोनों चीज़ें, एक तो मेरी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एजुकेशन मीडिया की वो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो मुझे हासिल करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक एकेडेमिया की साइड पे आया, और दूसरा ज़रा मुझे टाइम भी चाहिए था। तो वो फिर मैंने स्विच किया, फिर मैंने अपनी जो एजुकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन तो की हुई थी अपनी 12 साल के बाद, मैंने ग्रेजुएशन के बाद मीडिया में मैंने मास्टर्स किया 2012 में, और फिर उसके साथ ही फिर मैंने एमफिल भी मीडिया में ही किया। मीडिया में जब मैंने एजुकेशन हासिल की तो फिर मुझे ये शौक भी हुआ कि अच्छा मैंने पढ़ा भी है इसको, और जब मैंने एजुकेशन हासिल की तो मुझे फील हुआ उस टाइम पे कि वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और वो जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकल कर रही है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड से आया था। मैंने ना सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री में काम किया, फीचर फिल्म से उनके साथ भी मैंने काम किया, फिर जो पाकिस्तान के टॉप के टीवी चैनल्स हैं, जियो टीवी, दुनिया टीवी, और इवन स्पोर्ट्स टीवी जो है 10 स्पोर्ट्स, उसके साथ भी मैं काम कर चुका था। तो मुझे फिर फील हुआ कि वो एक गैप है बीच में, जो कि एकेडेमिया का और प्रैक्टिकल फील्ड का, और वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो मैंने उस वक्त फिर सोचा कि अभी मेरे पास कुछ और टाइम है जो कि मैं घर वालों को दे सकता हूँ, और तो उस दौरान एक एकेडेमिया एक ऐसी फील्ड थी कि जो मैंने कोशिश की और जो मेरी ख्वाहिश भी बन गई कि मुझे जाना चाहिए एकेडेमिया में, और वो स्टूडेंट्स जो कि नए नए आ रहे हैं मीडिया में और मीडिया को समझना चाह रहे हैं और उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे मैं जाके मैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोई टिप्स उनको दे सकूँ, कोई प्रैक्टिकल के साथ जो एजुकेशनल है जो गैप है मैं उसको फिल कर सकूँ। तो यही मेरी ख्वाहिश थी, और फिर मैंने उसको पूरा करने के लिए फिर एकेडेमिया को ज्वाइन किया, और यहाँ आने का ज़रा एक मेरे ख्याल में मेरा एक अच्छा बेहतर फैसला था कि मैं एकेडेमिया में आया। ना सिर्फ उससे मेरी अपनी लर्निंग बढ़ी, बल्कि वो जो कुछ मैंने लर्न किया था मीडिया से भी और एकेडेमिया से भी, वो मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाया।
3: और सर, जब आप स्टूडेंट्स को क्लास पर पढ़ाते हैं, जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं वो कितने एंथुजियास्टिक आपको फील होते हैं, आपको क्या उनको पढ़ाते हुए फील होता है कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये बेहतर तौर पर, और उनको आप किस तरह से मीडिया और इंडस्ट्री एक्सपोजर के बारे में समझाते हैं?
4: अच्छा, फिल्म के स्टूडेंट्स स्पेशली होते हैं, वो ज़्यादा वो ज्वाइन करते हैं, वो एक शौक के साथ तो आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वो जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें शौक तो ज़रूर होता है कि हम फिल्म बनाएंगे, फिल्म के लिए काम करेंगे या ऑन स्क्रीन काम करेंगे टीवी ड्रामा के लिए, लेकिन उनमें वो जो सिर्फ शौक की हद तक तो कुछ बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो फीलिंग आ रही है और जो बच्चे हमारे पास आ भी रहे हैं और एक्सपीरियंस हो रहा है, उनमें वो जो जोश और जज्बा होना चाहिए और वो काम करने की लगन होनी चाहिए, उसमें कमी है। और इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि कुछ बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, और जब वो ये देखते हैं कि इस फील्ड में कितनी सख्ती है या कितनी रिक्वायरमेंट है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो अभी एंथुजियाज्म ज़रा है, और जो है जिन बच्चों में तो वो एक्सेल भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा जो हम अपने टीचर्स यहाँ से बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वो उनसे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद वक्त के साथ शायद कुछ कम हुई है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपना गोल सेट नहीं कर पाते कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में आते हैं तो उनका एक्चुअल गोल क्या है, क्या वो ऑन स्क्रीन काम करना चाहते हैं या बैक स्क्रीन काम करना चाह रहे हैं, अगर बैक स्क्रीन है तो बैक स्क्रीन में कौन कौन सी ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा बच्चों को, हम कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि हम बच्चों को ये चीज़ें डिलीवर कर सके और उनको जो मीडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहुंचा सके, जिसमें आवाज़ भी है, ऑडियो है, वीडियो है, विजुअल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, एनिमेशन हैं और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारा स्किल सेट हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। लेकिन बच्चा किस एक या दो या ज़्यादा स्किल सेट को अपनाता है ये उसकी उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे उस स्किल सेट को हासिल नहीं करते, शायद अपने दीगर वजूहात की बिना पर, लेकिन अगर वो स्किल सेट को हासिल करें तो यकीनन वो एक्सेल कर सकते हैं।
3: अच्छा सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा के बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा में क्या ऐसी सर्टेन टास्क हैं जो वो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि उन्हें पहले से आइडिया हो कि जब हमने मीडिया एक्सपोजर लेना है तो हम ये सब चीज़ें हैं या ये फील्ड या कैरियर है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं?
4: देखिए, ऑन कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को डायरेक्टली नज़र आ रही होती है और हर कोई ये समझता है कि मैं ऑन कैमरा आ सकता हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। हमें अपना एनालिसिस करना, स्टूडेंट्स को अपना एनालिसिस करना कि क्या वो ऑन स्क्रीन के लिए ठीक हैं या नहीं, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बैक ऑफ द कैमरा भी काम करते हैं तो आपने ये बेस्ट एनालाइज करना है कि ऑन कैमरा क्या अच्छा लग रहा है, कौन से फेजेस ऐसे हैं जो कि अच्छे लग सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बोलने में अच्छे हैं या परफॉर्मेंस में अच्छे हैं। ये आपका, अगर आप अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे दूसरों के बारे में तो आप अपने के बारे में भी ये अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे। तो ऑन कैमरा की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो आपकी अपीयरेंस काउंट होती है। अपीयरेंस का मतलब सिर्फ खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती क्योंकि हर शख्स के लिए डिफरेंट है, और जब हम ऑन स्क्रीन के लिए काम करते हैं तो हमारे जो करेक्टर्स हैं, जो हमारी कहानियाँ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। वो खूबसूरती किसी के मोटे होने में भी है, किसी के पतले होने में भी है, किसी के स्मार्ट होने में भी है, किसी के गोरे होने में भी है, और किसी के काले होने में भी है, क्योंकि हमारे जो किरदार है ना, कहानियाँ तो किरदारों से बनती हैं और हर किरदार एक मुख्तलिफ किस्म का रोल प्ले कर रहा होता है, अपनी कहानी को किस तरह से आगे लेके चल रहा होता है। तो लेकिन स्क्रीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो किरदार है वो लोगों तक असल में रियलिटी के साथ लोगों तक पहुंच पाए ना, तो उसमें लोगों का, उसमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो एक्टिंग की स्किल है स्पेशली वो बेहतरीन हो, और अगर वो प्रेजेंटेशन न्यूज़ चैनल्स में के हवाले से देखते हैं कि वो ऑन स्क्रीन न्यूज़ एंकर हैं या वो प्रोग्राम के होस्ट हैं, तो वहाँ पे ना सिर्फ आपकी अपीयरेंस काउंट होगी बल्कि जो दूसरी चीज़ है, आपका वर्बल जो आप बोल रहे होते हो, जो आपका नॉलेज है, जो आपका
3: कम्युनिकेशन
4: स्किल है और स्टाइल है, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। और ज़ाहिर जो टीवी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, आपको फ्लुएंसी भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, और आपको करंट अफेयर्स का मालूमात होना भी ज़रूरी है, और आपका फ्लुएंट होना भी ज़रूरी है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑन स्क्रीन के लिए काउंट होती हैं। तो वो सब स्टूडेंट्स, ज़ाहिर वो नहीं हो सकता, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुख्तलिफ तरह से पैदा किया हुआ है। तो ये एक तो अपना एनालिसिस करना कि हम ऑन स्क्रीन के हैं या नहीं है, अदरवाइज ऑफ स्क्रीन पे बेशुमार काम है। पहला जो स्किल सेट है वो आपका राइटिंग का है। जो मीडिया में जो भी स्टूडेंट आता है, जो भी शख्स आता है, उसकी जो मेन असल स्किल है वो उसकी राइटिंग की है, कि अगर वो लिख सकता है ना तो फिर उसके पास एक बहुत बड़ी स्किल है। पाकिस्तान में क्या मीडिया जहाँ पे भी है, आपके राइटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है कि आपने लिखना क्या है, क्योंकि जो लिखा जाएगा वही बोला भी जाएगा और वही पेश भी किया जाएगा, परफॉर्म भी किया जाएगा। तो लिखने की स्किल से ही स्टार्ट होता है मीडिया हमेशा, कहीं से भी आप ड्रामा में चले जाएं, फिल्म में चले जाएं, न्यूज़ इंडस्ट्री में चले जाएं, प्रोग्राम में भी चले जाएं, राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत अच्छा पे भी करती है और आपका नाम भी बनाती है। हम राइटर्स के, पोएट्स के नाम गिन सकते हैं कि कितने कितने फेमस लोग रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा, राइटिंग के अलावा, जब आपका हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, एक नॉर्मली जो सेकंड टीयर आपका कहलाता है, कि जो चीज़ें बनाने वाला, जो प्रोड्यूस करने वाला, वो डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्शन भी आपकी एक अहम है कि आप बहुत सारी चीज़ें ड्रामा के लिए, फिल्म के लिए, टीवी कमर्शियल्स के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, रेडियो के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो सारी की सारी फैसिलिटेट करते हैं डायरेक्टर्स को, उनको टैलेंट में, उनको बजट्स में, उनको लोकेशंस में, उनको जितने भी रिसोर्सेज बैकग्राउंड में चाहिए होते हैं उसके लिए, तो प्रोड्यूसर्स एक बहुत बड़ा अच्छा रोल होता है बैकग्राउंड में। देन आपकी जो स्किल सेट है वो आपका और ज़्यादा वसी हो जाता है, आपकी कैमरा की ऑपरेशंस आ जाते हैं कि आप किस तरह से जो स्क्रीन के लिए एक लैंग्वेज क्रिएट करते हो, जो कि विजुअल लैंग्वेज है, वो कैमरा के थ्रू आप किस तरह से रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ठीक है। फिर कैमरा के साथ आपका ऑडियो आ जाती है कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग्स किस तरह से आप करते हो, और ऑडियो की एक बहुत बड़ी गेम है म्यूज़िक इंडस्ट्री, आपकी साउंड की, आपकी बैकग्राउंड म्यूज़िक की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपकी स्किल सेट में ऑडियो की रिकॉर्डिंग और म्यूज़िक की प्रोडक्शन आ जाती है बहुत बड़ी। देन आपकी जो प्रोडक्शंस हैं, डिज़ाइन, जो आपका क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव में आपका जितने भी सेट्स लगते हैं, जो कुछ भी डिज़ाइन बनता है, स्क्रीन के लेआउट्स बनते हैं, वो सारे के सारा उसमें आ जाता है कि आप डिज़ाइनिंग में या आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी जो एडिटिंग है, एडिटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और एक मेन स्किल है कि आपने जो भी ऑडियो वीडियो फोटोज हैं उनको आपने एडिट करना है, और तो एडिटिंग की एक स्किल भी बहुत अहम काउंट होती है। और आजकल अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया का जिस तरह से दौर है और डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया में जो चीज़ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम काउंट होती है, अगर आप एक आपकी राइटिंग और दूसरी आपकी एडिटिंग, और ये वो दोनों ऐसी ही चीज़ें जो आप आराम से विदाउट एनी क्या कहते हैं कहीं पर जाए बगैर भी सिर्फ एक जगह पर बैठ के भी आप काम कर सकते हैं कि आप लिखें और जस्ट एडिट करें और आपकी एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाती है। यानी डिजिटल मीडिया ने एक किस्म का एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया
3: है, क्योंकि
4: एक बड़ी एक जो बड़ी प्रोडक्शन जो है जो कि जिसमें आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा वक्त बहुत ज्यादा बजट लगता था उसको बहुत शॉर्ट कर दिया। तो ये वो स्किल्स हैं। फिर आपकी एनिमेशन हैं, आप एनिमेशन में कर सकते हैं, VFX में कर सकते हैं, डिजाइन में कर सकते हैं। देर आर सो मैनी बैकग्राउंड स्किल्स हैं जिनको आप स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और बच्चों को उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी स्क्रीन जो है वो ऑडियो की स्क्रीन है या वीडियो की स्क्रीन है उसके लिए काम करते हैं तो सारी की सारी बैकग्राउंड पे जो काम वर्कर्स की वजह से कंपाइल हो पाती है। तो बहुत सारी स्किल्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं। जब हम टेक्निकल में जाते हैं और कैमरा में फर्ज किया हम जाते हैं, तो कैमरा जस्ट लाइक हम कैमरा मैन को कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा मैन के साथ जो कैमरा के हैंडलर्स हैं वो भी होते हैं, जो डिफरेंट एसेसरीज होती हैं जो इनके यूजर्स होते हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं, कि जो ऑडियो ऑपरेटर है, जो साउंड ऑपरेटर है, जो आपका जिप का ऑपरेटर है, जो आपका फोकस पोलर है, ठीक है, तो उसके साथ बहुत बड़ी स्किल सेट बनता है और वो हाईली पेड भी है। तो बच्चों की सोचना चाहिए कि अगर हम ऑन स्क्रीन नहीं कर रहे तो ऑन स्क्रीन के लिए अगर कंटेंट बना रहे थे उसके बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए बेशुमार एक लंबी लिस्ट है जिसपे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं और जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो जो टेक्निकल होगा ना उसकी वर्कफोर्स की भी कमी है, अच्छा टेक्निकल जो वर्कफोर्स है उसकी भी कमी है, उसके लिए बाज़ का जैसे हमारी फिल्म्स बनती हैं मार्केट में और उसके लिए बहुत सारे लोग वो बाहर से हायर करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद पाकिस्तान में काम करने वाले लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं है, तो नई नई जितनी भी कोई टेक्नोलॉजी आती है और उसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे लोग बाहर से हायर होते हैं।
3: सर आपने इतनी डिटेल में बताया ऑन सेट और ऑफ स्क्रीन काम करने का किस किस तरह से डिफरेंट है, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यूजुअली हमें यही पता होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर हॉस्ट या एंकर, लेकिन आपने जितना डिटेल बताया मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और मेरे सामाइन ने इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और आज के हमारे मेहमान हैं प्रिंसिपल लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन सर शाहिद। ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन किस किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं। सर, आपने बात की थी कि एडिटिंग की, कैमरा हैंडलिंग की, कैमरा ऑपरेशन की, और इस तरह से बहुत सारे क्रिएटिव डिजाइन जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से अपने आप को और अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स को वेल ट्रेन कर रहे हैं इन सब रिगार्ड्स में।
2: अच्छा मिस प्री, मैं बताता चलूँ आपको कि जो यूसीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, और इसका जो मीडिया डिपार्टमेंट है, ये मैं बगैर किसी मुबालगा आरई के कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट मीडिया स्कूल है, जो कि आपको टेक्निकल फैसिलिटीज़ के हवाले से, फैकल्टी के हवाले से बेस्ट है। कि यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है वो दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे शायद उस टाइप का माहौल भी नहीं है और इस टाइप का इक्विपमेंट भी नहीं है। जैसा कि देखा जाए तो हमारा जो यूसीपी का मीडिया स्कूल है, इसमें अपना रेडियो चैनल है जिसको हम एफएम 92 कहते हैं, और यहाँ पे आप रेडियो का एक प्रॉपर सेटअप है जो कि 24/7 जो है हमारा चैनल चल रहा होता है रेडियो का, और जिसमें आप आवाज़ को लेके और डिफरेंट जो रेडियो के प्रोग्राम्स हैं उसका स्किल सेट जो है सिखाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्शन हाउस है, टीवी का प्रोडक्शन हाउस है जो कि न्यूज़ के हवाले से तो डिज़ाइन है, वहाँ पर हमारे डिफरेंट सेट न्यूज़ का, प्रोग्राम का, और क्रोमा के हवाले से भी यहाँ पर मौजूद है फैसिलिटीज़, और लेटेस्ट कैमराज हैं और जो डीगर इक्विपमेंट है जिसमें लाइटिंग और साउंड है वो सारे के सारे इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। और ये टीवी का जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, ये ना सिर्फ लाइव प्रोग्राम्स भी कर रहा होता है बल्कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी कर रहा होता है, और स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस के अलावा भी ये अवेलेबल होता है, और यहाँ पे बच्चे अपना स्किल सेट को बढ़ाते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर पीसीआर भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो लैब है जो कि कंप्यूटर लैब है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू लैब्स हैं जहाँ पे लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं जो कि ना सिर्फ ग्राफिक्स के लिए बल्कि एनिमेशंस के लिए और एडिटिंग के लिए भी सूटेबल हैं, और आप किसी भी किस्म की एडिटिंग को भी और डिज़ाइन को भी कर सकते हैं। ये वो स्किल सेट है, ये वो इक्विपमेंट है जो स्टूडेंट्स को, मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो स्टूडेंट चाहे पीआर का हो, एडवर्टाइजिंग का हो, फिल्म का हो, ड्रामे का हो, या जर्नलिज्म का हो, तो के लिए, सब के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकली वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, और वो हमें सिखाई भी जाती हैं, और बच्चे उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, तो उससे उनका स्किल सेट बढ़ता है, तो बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना सिर्फ वो सीख रहे हैं, बेहतरीन हमारे पास फैकल्टी है जो कि ना सिर्फ पीआर में, एडवर्टाइजिंग में, फिल्म में, रेडियो में की स्पेशलाइज है, बल्कि वो ये स्किल सेट बच्चों तक पहुंचा भी रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं जो कि बच्चे खुद से होस्ट कर रहे होते हैं और उससे लर्न भी कर रहे होते हैं, और अच्छी बात यह कि हमारा जो कनेक्शन है इंडस्ट्री के साथ भी है स्कूल का, और हमारे बहुत सारे बच्चे जो मार्केट में काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो उनको रेफर भी करती है और उनको इंटर्नशिप भी दवाई जाती है, और फिर रिक्रूटमेंट की ड्राइव्स भी हमारी चल रही होती हैं, और डिफरेंट जो मीडिया हाउसेज हैं वो डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो एडवर्टाइजिंग की एजेंसीज भी हैं, वो न्यूज़ के टीवी चैनल्स भी हैं, और वो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज भी हैं जिनके साथ हमारे एमओयूज़ हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से ना सिर्फ स्किल सेट हासिल करते हैं बल्कि उनको इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो भी उनको सीखने का मौका मिलता है, और हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं और ना सिर्फ वो जाते हैं बल्कि वो स्किल सेट सीखते भी हैं और फिर मार्केट में काम भी करते हैं, और हमारे बच्चे काफ़ी सारे, ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा नाम भी बना रहे हैं और कमा भी रहे हैं।
1: सर, अभी जैसे आप बात करी थी कि एडिटिंग के प्रॉपर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं और हमारे पास बिल्ड इन लैब्स हैं जिसमें बहुत अच्छे से एडिटिंग सिखाई जाती है, तो वो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत इजी टू यूज़ हैं जो बिगनर्स भी यूज़ कर सकते हैं?
2: देखिए, एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अगर हम ऑडियो की एडिटिंग की बात करें तो हमारे ऑडिशन होता है और साउंड फोर्ज वगैरह होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं। वीडियो की एडिटिंग की बात की जाए तो अडोब का ही प्रीमियर जो है आमतौर पे उसको समझा जा रहा होता है कि वो उसका यूजेज ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा भी और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप यूज़ करते हो जिसमें कि ग्राफिक्स से कि जो इंटरलिंक्ड है, जो एडिटिंग है वो इंटरलिंक्ड है, जिसमें आपकी इमेज की एडिटिंग और एनिमेशन की एडिटिंग और साउंड की एडिटिंग सारी सारी मर्ज और मिक्स एंड मर्ज हो रही होती है। तो इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और भी हैं, एडोब एनिमे हैं जिसे हम एनिमेट कह रहे होते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा 3D के सॉफ्टवेयर्स भी हैं, एनिमेशन को हम 3D के एनवायरनमेंट में करना चाहें। फिर डिज़ाइन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें यूआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो सॉफ्टवेयर्स वो सारे जो मार्केट में इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो हमारे पास सिस्टम्स और लैब्स ऐसी हैं कि वो बच्चे उसको ना सिर्फ अच्छे तरीके से उस पर कर सकते हैं बल्कि वो वहाँ पे उस पर प्रोड्यूस भी ढेर चीज़ें कर रहे होते हैं।
1: और सर अगर हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो हमारे पास क्या हम वेल इक्विप्ड हैं और हम स्टूडेंट्स को ऑपरेट करना सिखाते हैं?
2: जी बिल्कुल, हम ऑपरेट करना भी सिखा रहे होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि हमारा ना सिर्फ टीवी के जो प्रोडक्शन हो सिर्फ वहाँ पे ऑडियो की प्रॉपर जो इसके माइक्स रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और जो प्रोफेशनल माइक्स हैं वो सारे किस्म के माइक्स अवेलेबल हैं। जैसे प्रोडक्शन के लिए हमारे नॉर्मल मित्र वायरलेस माइक्स भी होते हैं, बूम माइक्स भी होते हैं, केबल माइक्स भी होते हैं, वो सारे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास रेडियो की फैसिलिटी है कि रेडियो में भी जो आउंड है, जो साउंड है, जो और ज़्यादा अगर आपने ज़्यादा प्रोफेशनल वे में करनी हो तो रेडियो में हमारे पास वो साउंड का प्रॉपर इक्विपमेंट है। वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग्स भी हो रही होती हैं और लाइव भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो साउंड के हवाले से भी यूसीपी में बेहतरीन फैसिलिटीज भी हैं और इक्विपमेंट भी है।
1: अच्छा सर, जब स्टूडेंट्स कैमरा या कोई भी अदर इक्विपमेंट कोई ऑपरेट करने वाले होते हैं तो आप उनको क्या गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि इसको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको फील्ड में लेके जाके कैसे यूज़ करना है, क्लास के अंदर? आप मैंने देखा है कि अक्सर मैं स्टूडेंट्स की पोस्ट और स्टोरीज देखती हूँ, वो वीडियोज़ लगा रहे होते हैं कि सर शाहिद की क्लास है और सर सिखा रहे हैं, तो कितना टेक्निकल हो जाता है और आप उसमें किस तरह से उन्हें गाइड कर रहे होते हैं?
2: देखिए टेक्निकल ज़रा कोई भी इक्विपमेंट है तो उसको एटलीस्ट उस इक्विपमेंट का ना होना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए ना, और वो ना हो तभी आता है जब आपके इक्विपमेंट आपके हाथ में है और आप उसको ऑपरेट करना शुरू करें। सर ये बहुत नाजुक चीज़ें तो होती हैं, आपको बड़ी डेलिकेसी के साथ इन चीज़ों को इक्विपमेंट को यूज़ करना होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है, लेकिन एटलीस्ट सिर्फ इसकी डेलिकेसी पर नहीं जाना। जब तक आप किसी भी टेक्निकल चीज़ को, किसी भी इक्विपमेंट को पर्सनली खुद यूज़ ना कर सके आपको उसका आइडिया नहीं होता। तो डिफरेंट ब्रांड्स के आपके कैमराज, लाइट, साउंड की चीज़ें होती हैं, इनको इसकी डेलिकेसी को साइड पे रखे इसको यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि आप इनको ऑपरेट करें, खुद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करें। वो स्टूडेंट्स जो कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग खुद से करते हैं, खुद से इन इक्विपमेंट के साथ प्ले करते हैं और देखते हैं कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो ज़्यादा लर्न कर पाते हैं। जस्ट ये देखना कि कोई और कर रहा है और ये इक्विपमेंट मौजूद है, उसके मौजूद होने से कुछ भी नहीं होगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को ज़्यादा हम चीज़ें बताते भी, और बहुत सारे बच्चे जिनको शौक़ होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है कैमरा में, लाइट में, साउंड में, वो ना सिर्फ क्लास में भी उसको उन चीज़ों को, इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं बल्कि क्लास के बाद भी उनको एक्सरसाइज करते हैं।
1: और सर आप हर स्टूडेंट को उसको प्रैक्टिकली करना सिखा रहे होते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश तो ये होती है हम सब स्टूडेंट्स को वो चीज़ें करवाएं प्रैक्टिकल, क्यों है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बगैर जो मीडिया की स्पेशल विजुअल स्क्रीन की जो ट्रेनिंग है वो नामुकम्मल रहती है।
1: और सर हमारे सुनने वालों को, स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे कि जब वो कैमरा हैंडलिंग या लाइटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको उन्हें फॉलो करने?
2: देखिए मार्केट में क्या काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी चीज़ विजुअल क्रिएट कर रहे हो कैमरा के थ्रू, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपने क्या लाइट करनी है और किस किस्म का फ्रेम बनाना है। उसके लिए आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो हमारी स्क्रीन की जो गाइडलाइंस हैं, जो उसकी ग्रामर है स्क्रीन के लिए वो क्या है। अगर वो आप उसको अच्छे तरीके से समझोगे, सिर्फ कैमरा को ऑन करना ज़रूरी नहीं है हर, क्योंकि आजकल हर शख्स ही कैमरा का यूज़र है। आपके मोबाइल ने आपको इतना फैसिलिटेट कर दिया कि आप कैमरा को यूज़ कर सकें, और उसमें भी जिस वो लोग जो कि एजुकेटेड तो नहीं होते लेकिन एस्थेटिकली उस वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अच्छा विजुअल क्रिएट कर पाते हैं। तो स्टडी में भी ये बड़ा ज़रूरी है कि इक्विपमेंट का स्किल सेट तो हासिल करना बहुत ज़रूरी है लेकिन आपको एस्थेटिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन सा विजुअल क्रिएट कर रहे हो और कैसा क्रिएट कर रहे हो और उसको आप आल्टर कैसे कर सकते हो, उसमें आप तब्दीली क्या ला सकते हो, और ख़ुद से विद इन फ्रेम किस किस्म के सब्जेक्ट को आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हो, ये बड़ा अहम है कि उस फ्रेम में उस कैमरा के जरिए आप लोगों को दिखा क्या रहे हो। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा एजुकेशन के साथ भी और आपके अपने एस्थेटिक्स के साथ भी, आप किस तरह से एस्थेटिकली चीज़ों को, रंगों को और प्रेजेंट करते हैं लोगों के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप समझें कि स्क्रीन पे क्या और कैसे दिखाएं।
1: सर लाइटिंग के बारे में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे?
2: देखिए लाइटिंग आमतौर पर तो नॉर्मली नेचुरल लाइट का बड़ा एक ट्रेंड है, रियलिटी बेस्ड लाइटिंग होती है कि हम रियल में जो जैसा नज़र आ रहा होता है वैसा भी प्रेजेंट करें, लेकिन बाज़ का टीवी की और फिल्म की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि आप चीज़ों को पहले से बेहतर करके दिखाना चाह रहे होते हैं। तो लाइटिंग को समझना कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी लाइट के कलर्स क्या हैं और कोई ख़ास कलर कोई क्या मूड क्रिएट कर सकता है, और कोशिश होती है कि आप नेचुरल रहते हुए लाइटिंग को करें। लेकिन लाइटिंग बहुत वसी है, आपका विजुअल लाइट से ही क्रिएट होता है, और कैमरा की जब टेक्निक्स को बता रहे होते हैं उसमें हमारा मेनली फोकस ना सिर्फ कैमरा के टूल्स पे तो होता है, वो बेसिक होता है, लेकिन लाइटिंग पे ज़्यादा होता है कि लाइटिंग से आपने किस तरह से डिफरेंट मूड्स एंड एनवायरमेंट्स कैसे क्रिएट करने। तो लाइटिंग को अब मोस्ट फोकस किया जाता है ड्रामा में भी और फिल्म में भी।
1: और सर बिल्कुल एंड पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जब वो ये फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं वो किस अप्रोच के साथ ज्वाइन करें और मीडिया फील्ड में आने के बाद वो किस किस प्रॉब्लम को किस किस तरह से साइड पे रख के अपने कैरियर पे फोकस कर सकते हैं।
2: देखिए स्टूडेंट जो मीडिया की एजुकेशन हासिल कर रहा है उसको बड़ा फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि वो मीडिया की इंडस्ट्री में क्या करना चाह रहा है, वो डायरेक्शन करना चाह रहा है, वो ऑन स्क्रीन काम करना चाह रहा है, वो बैक स्क्रीन काम करना चाह रहा है, वो एडिटिंग करना चाह रहा है। अगर उसका गोल सेट होगा तो उसे ये पता होगा कि मैंने क्या करना है। और बाकी क्योंकि सारी चीज़ें सिखाई तो जा रही होती हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे स्किल सेट को हासिल करते हैं, वो साउंड को, विजुअल को, एडिटिंग को, स्क्रिप्ट को, सबको सीखते हैं और उसको एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने गोल ओरिएंटेड नहीं होते। जब आपका बस आपको कोशिश होती है कि अपना स्किल सेट कायम करें, आपको एक स्किल हासिल करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें, आपको एक दो तीन स्किल्स आनी चाहिए। और अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो फिर आपका स्किल सेट और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल टारगेटेड होना है। आपके पास 4 साल होते हैं, आप हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट्स बनते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में से आपने चूज़ करना है कि आपकी नीश क्या है, कि आपको क्या पसंद है, और जो चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से काम करें। अगर आपने ऑन स्क्रीन काम करना है तो फिर अपनी आवाज़ को बेहतर करें, रेडियो को भी ज्वाइन करें, आप एक्टिंग के लिए थिएटर को भी करें और ऑन स्क्रीन के लिए आप काम भी करें। डिजिटल बहुत बड़ा मीडियम है, ठीक है। तो अगर ऑन स्क्रीन है तो फिर ऑन स्क्रीन के तकाजों को पूरा करें आप, क्योंकि आवाज़ और विजुअल दोनों ही चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। और अगर बैक स्क्रीन पे हैं तो फिर आप पूरी डायरेक्शन को उसकी समझें, स्क्रिप्ट को भी समझें, एक्टर्स को भी समझें, एडिटिंग को भी समझें, साउंड को भी समझें, म्यूजिक को भी समझें और उसको प्रैक्टिस करें। और देखो प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। फिल्म के स्टूडेंट्स की एक वो नाकामी की एक वजह ये भी थी कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि जो चीज़ बनी हुई है हम देख रहे हैं वो आसानी से बन जाएगी, तो ऐसा नहीं। हर चीज़ को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। खाना भी बनाना हो तो वो सारे इन्ग्रीडियंट्स इकट्ठे करके आपको टाइम देना पड़ता है। तो स्क्रीन के लिए काम करने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। और ये यूनिवर्सिटीज़ होती इसलिए कि आपको ना सिर्फ सिखाया जाता है बल्कि आपके पास गलती का चांस होता है। जब आप काम करोगे तो आप कुछ ना कुछ गलती भी करोगे और वो गलती आपके सीखने के लिए होती है। वंस यू आर इन ए मार्केट तो फिर आपके लिए मसला होगा कि वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। वहाँ पे अगर आपको काम करना होगा तो फिर आपको प्रॉपर और परफेक्ट करना होगा। तो यूनिवर्सिटीज़ आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप यहाँ पे एक्सरसाइज करें। आप गलती अगर करते हैं तो गलती सीखने के लिए होती है। आप एक्सरसाइज करें, उससे आपकी बेहतरी आएगी और आपका निखार आएगा।
1: थैंक यू सो मच सर शाहिद, आप साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। आपने एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से मुझे और मेरे सुनने वालों को गाइड किया। इसी के साथ हम करते हैं अपने फैकल्टी प्रोग्राम का एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक बेहतरीन गेस्ट के साथ मजीद फिर आएंगे। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मैं हूं मरियम इरशाद, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: होती है।
1: तो ये तो इसका उल्ट है।
0: उलट है, बिल्कुल उलट है। ये हमने प्रेजेंट ही ठीक नहीं किया, इसलिए कि हमारे लोग भी मारते हैं अपनी बीवियों को, तो प्रेजेंट क्या करेंगे।
1: चलिए डॉक्टर साहब, आई थिंक दिस इज, कम से कम इस पर सोचना चाहिए। अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब। थोड़ा अगर हम आगे चलें, क्योंकि हमारा मौजू है निकाह और तलाक, तो उसके सब मामलात को हम एक एक करके देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइए कि जब एक इंस्टीट्यूशन वजूद में आता है और फैमिली आपने रेज करनी है, तो फैमिली प्लानिंग का भी बड़ा एक इशू है कि वो सूरह बकरा की आयत पेश की जाती है कि ये आपकी जिस तरह खेती है इसमें आप जाएं, क्योंकि आप खेती में जाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो गोया कि फैमिली प्लानिंग उस पर बेस करते हैं कि जायज़ ही नहीं है। आप यू नो, इसको आप किस तरह पेश करेंगे फैमिली प्लानिंग के इशू को?
0: उसी आयत को देख लें आप। अगर वो खेती है तो जाहिर है कि एक किसान अपनी खेती का ख्याल रखेगा ना, यानी या ये करेगा कि उस पर एक क्रॉप, फिर उसके बाद दूसरी क्रॉप, उसके बाद तीसरी क्रॉप लादना शुरू कर देगा। हर अच्छा किसान जो समझता है कि ये खेती मेरी है, तो फिर वो उस खेती की फर्टिलिटी, उसकी सेहत, उसकी देखभाल का हद दर्जे लिहाज करेगा। अगर मिसाल के तौर पर जानवर आते हैं उस पर यू नो जाकर फसलें खाते हैं, तो बाड़ लगाएगा वो और दूसरे काम करेगा। तो ये जो एक अल्लाह ताला ने इस मिसाल तमसील दी है, उससे भी बात समझ में आती है। हमारे यहाँ जो फैमिली प्लानिंग करने वाले लोग हैं, उसके नहीं, फैमिली प्लानिंग के जो मुखालिफ लोग हैं, वो जो बात कहते हैं, वो एक तो ये बात खेती वाली कहते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर वो ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि ये रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है।
1: जी जी।
0: और कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में फरमाया है कि ला तक्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम व इयाकुम, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी देते हैं। यानी मतलब ये है कि ये बात के अगर चार के बाद पांचवा बच्चा आ जाएगा तो खाएंगे कहाँ से, ये तो चौथे पर ही हमारा बजट खराब हो रहा है। ये बात है। इसमें मैं एक तो गुजारिश ये करूँगा कि ये बात मैं समझता हूँ कि जो एतराज करने वाले हैं वो गलत नहीं करते। असल में क्या है कि एक मशहूर एक इकोनॉमिस्ट गुजरा है मैल्थस, उसने एक थ्योरी पेश की थी मैल्थ्यूजियन थ्योरी, जिसमें उसने ये कहा था कि ये जो हमारे यहाँ, उसके ज़माने की बात है, प्रॉब्ली इसका ज़माना था कोई 19th century, कि जो हमारे यहाँ अजनास की पैदावार है वो अरिथमेटिक प्रोपोर्शन से बढ़ती है, 1, 2, 3, 4 हर सीज़न में। जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ती है, 2, 4, 8, 16। तो जब इस तरह से ये आबादी बढ़ेगी तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि जो अजनास, जो खुराक हमारे पास मौजूद है वो कम पड़ जाएगी और खाने वाले पेट और मुंह ज़्यादा होंगे, और फिर उसका नतीजा निकलेगा कि यू नो वबाएं आएंगी और कैद साली होगी और फिर लोग मरेंगे और बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। इसने बहुत मशहूर कर दी ये चीज़ कि नहीं, बच्चे कम होने चाहिए। और हमारे यहाँ फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी मुझे याद है हमारे बचपन में, अच्छे कपड़े बेहतर खाना, अच्छे कपड़े बेहतर खाना, बच्चे कम खुशहाल कराना, ये होता था।
1: बच्चे दो ही अच्छे
0: वो आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अहले मजहब की ये क्रिटिसिज्म मैं मानता हूँ, लेकिन अहले मजहब का पॉपुलेशन प्लानिंग के खिलाफ जो है बयान, उसको मैं ठीक नहीं समझता। वो मैं अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह करूंगा।
1: ओके डॉक्टर साहब, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। हम इसी से ही सिलसिला का आगाज करें कि हमारे साथ रहिएगा।

0: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। हमारे साथ डॉक्टर खालिद जहीर हैं और हम गुफ्तगु कर रहे हैं माशरती मामलात, निकाह और तलाक के मामलात। तो फैमिली प्लानिंग पर बात हो रही थी डॉक्टर साहब, ये जो बात के हम उसको रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं, तो ये तो इससे तो बाहर यही पता चलता है कि फैमिली प्लानिंग तो जायज फिर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब किस तरह इसको आप
1: कि यही मसला होता है आमिर यजदानी साहब, अक्सर दुनियावी मामलात में और मैंने देखा दीनी मामलात में भी यक रुखे फैसले, यक रुखी सोच। भाई बच्चों के मामले में सिर्फ रोटी और चावल ही तो मसला नहीं होते, बच्चों के मामले में ज्यादा बड़ा मसला तरबियत है। तो जनाब जो बच्चा इस दुनिया में आएगा उससे पहले माँ और बाप को प्लान करना चाहिए कि क्या हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, क्या हम उसकी तरबियत कर सकते हैं, क्या हम उसको वक्त दे सकते हैं, क्या हम उसको अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान बना सकते हैं। सिर्फ रोटी का मसला तो नहीं है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बाज़ लोगों ने उसको रोटी का मसला बना लिया और बाज़ लोग जो है वो बिल्कुल ही फारिग हो गए। उनका ख्याल ये कि बच्चे पैदा करेंगे तो फिर अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे।
0: यानी उन्होंने जो बनी इसराइल में कि हम रिस्क देते हैं, उन्होंने उसको भर रोटी से मिला दिए।
1: हाँ,
0: एक रिस्क डाउन टू अर्थ,
1: बिल्कुल ठीक है।
0: रोटी एंड चावल,
1: मैं इस बात को मानता हूँ। मैंने तो अभी असल में बात पूरी नहीं की थी
0: जी।
1: मैल्थस की थ्योरी को खुदा ताला ने निगेट कर दिया। कैसे हुआ ये कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि इंसानी आबादी बढ़ी बहुत ज्यादा, मगर आप देखिए कि वही जमीन के जो 2 से 3 और 3 से 4 करती थी वो 2 से 8 और 8 से 20 करने लगी।
0: ये उसकी यील्ड जो है,
1: यील्ड जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। सो इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये जमीन खुदा ताला की तरफ से इंसानों की खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। मगर मसला सिर्फ खाने पीने का नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा मसला तरबियत का है। यानी ये कोई बात हुई कि एक बेचारी औरत जा रही है अपने गोद में, उसका बेटा है, बच्चा है, साथ उसके 2 हैं और 2-3 जो हैं वो सड़क पे जा रहे हैं और वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सक रही। तो इस तरह की क्या दीन हमको वो करता है, एनकरेज करता है कि हम औलाद रखें कि जिनको हम संभाल ना सकें। तो जब भी औलाद इस दुनिया में आएगी वो आएगी तो अल्लाह के हुक्म से, लेकिन वो आएगी माँ और बाप के फैसले से। जब वो फैसला करेंगे किसी नई नए नफ्स को, नए इंसान को दुनिया में लाने का, तो उन्हें लाजमन ये सोचना चाहिए कि फिर हम उसकी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मुआशी जिम्मेदारी उसमें एक हिस्सा है, उसकी तरबियत, उसको वक्त देना, उसके अखलाक संवारना, उसकी तालीम वगैरह, ये सब भी सोचना है।
0: यानी डॉक्टर साहब इस बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, जिस तरह वालदैन के हकूक हम कहते हैं, यकीनी बात है औलाद के हकूक है और बहुत उनके एक क्लियर कट हकूक है। अगर आप औलाद पैदा करते चले गए और उनके हक अदा ना आपने किया, ये तो फिर एक इंसानी हकूक की एक आपने पामाल किए फिर। तो डॉक्टर साहब अल्लाह का इस पे व्हाट इज अल्लाह's टेक ऑन दिस, अब ये फरमाएं।
1: अल्लाह ताला का टेक ये है कि मैंने तुमको अकल दी है, मैंने तुम्हें जिम्मेदार इंसान बनाया है, तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करो, और जब तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करके जिम्मेदारी का रवैया अख्तियार करोगे तो तुम हर नए बच्चे के आने से पहले ये सोचोगे, ये तय करोगे कि हम उसके लिए तैयार हैं, यानी उसकी तरबियत के लिए तैयार हैं, उसकी देखभाल के लिए तैयार हैं। ऐसे ही अलटप फैसला नहीं करना चाहिए।
0: तो फैमिली प्लानिंग दीन के हिसाब से जायज बनती है,
1: यानी ये जिम्मेदारी बनती है
0: जिम्मेदारी
1: हर माँ और बाप की कि नए बच्चे के आने से पहले वो सोच समझ कर उसके आने का फैसला करें। ये ना हो कि पता लगे वो एक और बच्चा आ गया। भाई आपके जरिए से आया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कंट्रसेप्शन, यानी बच्चों को पैदाइश से रोकथाम के लिए जो तरीके होते हैं उसमें भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे कुछ ओपिनियंस हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि आप कंट्रसेप्टिव इस्तेमाल करेंगे उसके बावजूद हो सकता है कि बच्चा आ जाए, इसलिए कि आखिरी फैसला अल्लाह का होता है। लेकिन आपकी प्लानिंग क्या है? आपकी प्लानिंग ये कि ओहो फिर आ गया, आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। तो आपको तैयार होना चाहिए, इसलिए कि बच्चा आपका है, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे। उसमें जिम्मेदारी का एक पहलू है माशी जिम्मेदारी। मान लिया वो अल्लाह ताला का फैसला है कि वो अजनास और खाने पीने की चीजें वो देगा, लेकिन ये बाकी सारी जिम्मेदारियां भी तो आपने निभानी है ना।
0: तो डॉक्टर साहब भी आपने फरमाया कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, तो उसमें तो ऑब्वियसली वो आप जरा यूज करेंगे फैमिली प्लानिंग के लिए, तो उसमें तो कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है मेरा ख्याल।
1: नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक पुराना तरीका था कंट्रासेप्शन का, नेचुरल विड्रॉल उसको कहते थे। तो उसके बारे में आपको जब मालूम हुआ, आपसे पूछा गया, तो आपने रोका नहीं, बल्कि आपने वही पैगंबराना जो एक बात है वो बयान फरमाई कि जिस इंसान को जिस जान को आना है तुम उसको आने से नहीं रोक सकते।
0: नहीं, नहीं। बड़ी हिकमत की बात।
1: अगर अगर तो ये होता ना कि आप फरमाते तुम ये क्या कर रहे हो, हरगिज़ ना करो, ये नहीं फरमाया आप। गुजारिश ये है कि उसमें कंट्रसेप्शन के इस्तेमाल में जो मुझे एतराज है वो ये है कि ये सिर्फ मियां और बीवी के लिए होना चाहिए, ये जिनाकारी का आला नहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब इसको आप एडवर्टाइज करते हैं तो माँ बाप तो ना जाने कुछ करते ही होंगे उसको इस्तेमाल, लेकिन अक्सर वो बदमाश लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो अपनी गलत हरकतों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और आप ये देखिए कि एडवर्टाइजमेंट्स में तो चले कुछ इशारे किनाए होते हैं, आप किसी भी दवा की दुकान पर जाएं मेडिकल स्टोर में तो वहां आपको बेहुदा किस्म के पैकेजेस के साथ आपको नजर आ रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो तो सबको अवेलेबल है। कोई आदमी शादीशुदा है या नहीं है, शादीशुदा है भी तो कहां इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए इस्लाम मुसलमान माशरे को फिक्रमंद होना चाहिए कि हम एक जायज काम के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये ना हो कि उससे 90% वो नाजायज कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये बहरहाल आपकी जिम्मेदारी है।
0: ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये फैमिली में एक और एस्पेक्ट है जो कि जिस पर बड़ी गुफ्तगू भी होती है, बाहर मुल्क में तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। यहाँ पर भारत वो इशू नहीं, लेकिन वो है अबॉर्शन का। डॉक्टर साहब, अबॉर्शन जो अगर एक आपने जैसा फरमाया ये औलाद के लिए आप प्लानिंग करते हैं और अगर वो अभी वो दी कपल इज नॉट रेडी और भारत कंसीव हो जाता है और वो दे गो फॉर अबॉर्शन के वी आर नॉट प्रिपेयर्ड येट, तो इसको आप हाउ डज इस्लाम लुक एट दिस?
1: देखिए, इस्लाम में और अल्लाह के पैगाम में इस मामले में भी जो रहनुमाई की है वो अल्लाह का पैगाम ही कर सकता है। वो दो सवाल, एक सवाल ये है कि क्या माँ के पेट में बच्चा के जो अभी दुनिया में नहीं आया क्या वो इंसान है या नहीं है? अगर इंसान नहीं है तो फिर तो जाहिर है कि आप उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो इंसान है तो फिर जैसे आप इंसान को नहीं मार सकते चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको भी नहीं मार सकते कि जो माँ के पेट में है। तो इसमें हमारे दीन ने जो रहनुमाई की है तो जाहिर अल्लाह की वही कर सकती है। कुरान मजीद ने यह बताया कि माँ के पेट में एक अरसा गुजर जाने के बाद, तीन अदवार गुजर जाने के बाद अल्लाह अपनी रूह फूंकता है। जब अल्लाह ने अपनी रूह फूंक दी तो ये असल में मेटाफोरिकली है कि वो बच्चा इंसान बन गया। हदीस से मालूम होता है कि वो जो अदवार है वो असल में 120 दिन है, 40-40 दिन के तीन अदवार है यानी 4 महीने। गोया के माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो पहले 4 महीनों में अगर आप अबॉर्ट करते हैं तो आप किसी इंसान को कत्ल नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जायज काम कर रहे हैं, आप किसी इंसान को कत्ल नहीं कर रहे। 4 महीने के बाद अगर आप करते हैं तो असल में इंसानी जान को आप कत्ल कर रहे हैं, जो आप कर ही नहीं सकते, सिवाय एक सूरत के कि माँ की जान खतरे में,
0: मेडिकल रीजन
1: हो। पहले 4 महीनों में भी आपका सवाल ये था कि अगर वालदैन कहें जी कि हमारी तो प्लानिंग ये थी कि बच्चा ना आए लेकिन वो आ गया, तो मैं वालदैन को कपल्स को यही मशवरा देता हूँ कि बेहतर ये कि आप ना करें। बहरहाल वो इंसानी जान नबी बनी हो यार, प्रोसेस तो शुरू हो गया, खुदा पे भरोसा करें। वो बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कितनी खूबसूरत बात है, जो कुछ भी तुम कर लो जिस इंसान ने आना है उसने तो आना है। इंसान के आने का प्रोसेस शुरू हो गया, भले अभी वो इंसान नहीं बना, मेरा ख्याल है रोकना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर कोई रोकता है तो ये हम नहीं कह सकते कि उसने कोई इंसानी जान को खत्म किया है। मैं ये कहूंगा कि ये गुनाह कबीरा तो नहीं होगा, सगीरा जरूर होगा।
0: अच्छा, आप इस तरह देखते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ से सिलसिला का आगाज करेंगे, साइमिन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद इधर से सिलसिला का आगाज करते हैं। शुक्रिया।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस

آواز دے دا لاہور دا آواز دے دا یو سی پی نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: इस सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: गुफ्तगु मेरा सुकून मेरा जुनून मेरी राहत तुम।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया UCB की दुनिया।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।